दुखी ब्रह्म न कोई एक घर मा थिए दलित्री अति थिए बालक तीन पुत्र उनका आपू दुई दंपति सला

0: कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा
1: छोरा
0: कस्तो धन सम्पत्ति के लानु छैन।

0: दुर्ग प्रसाद सेवापति कानून सब साहब सुनखानी सुनसारा सुबह में की नारी कर चली भारी विपत्ति ले पति से ऊंचाई बिन्नति कर चिंता पिदर ले गुरु देवता राजा और तुम भला मान सका निदान खाली हर मन कन कहुंच ज्योति समना देव के ही सौगर मन देवता चंगा कर मुदन चौधरी का हर्षित मुलाका नगर में विचार वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बोली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जनो बाला का ओ जननो बाला का ओ जगमग करने मन चित्त हरने।

अकस्मर गरि पूजे राणवारोड़े दिया सीता जी कण बेटी भरती काना फेरा।

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलुन सामुदायिक एफएम 92.7 MHz म पदे प्रसाद सागबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन् 2026 अगस्त 13 तारीख श्रावण 28 गते बिहीबार परेवा तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी।

0: परमात्मा
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म एउटौ शंख कपाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्म सान ननिलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिदक्षे बलिदक्षे गेम

यो तत्त्व भागवतम श्री कृष्ण पुराण लीला मेरे ततम आदौ राम तपोवनादि गगनम हत्या मृग कंचनम वैदेवी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालिनी हरणम समुद्र तरणम लंकापुरी वाहनम पचहत्तर रावण कुम्भकर्ण हनुमान यो तत्त्व भागवतम ए आलस्य त कपटी झट्ट पर जा लौ निस्की जा मन्टी जा ट्याक्कै टेक्न मदिन्न यो शरीरमा जो काट्नु काटिस मजा मैले बल्ल चिने तलाई त बडो लेत्र वैश्य दुर्जन तैले गर्नु गरी सबै बलहरी सारा बिगारिस गुण हरि शरणम।

इत्यादि सुन सावधान मनले श्री राम जी का कथा। यस्तो पुण्य पवित्र छलफल हुँदा आनन्द मान्छु मका। दुर्वासा मुनि गर्छु दर्शन भनी श्री रामको केही दिन।

सौत्यानी को तो वचन सत्य हुन जानिले सुख होला ईश्वर को ध्यान गर्न मन दे।